अस्सलाम वालेकुम साहब, हम सदाए तुर्किया से मुखातिब हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 25 मई ब्रो सोमवार है। इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक सुपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामिनों पर नशियात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलो हर्ट्स के अलावा तुर्सा 384 वेस्ट समेत हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। सामिन, आज हमारे प्रोग्राम अल तरतीब खबरें से प्रोग्राम अनातोली के शाहकार आसमानी कहानियां और अनातोली की इब्तदाई तहजीब पेश किए जाएंगे। हमारा प्रोग्राम हसब मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा और खबरों के खुलासे के साथ इसका इख्तिताम होगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान उपल।

पाकिस्तान पहले आज की खास खास खबरों का खुलासा सुनते हैं। तुर्किया ने पाकिस्तान में ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मुजम्मत की है। तुर्किया ने अबनिया के लिए अहल कहलक कार्स रेलवे लाइन की इफ्तताह का खैर मकदम किया है। जुर्म फिका के बैन अवी तल्लुत अमन अमूर के वजीर रोनाल्ड लिमोला ने कहा है कि तुर्किया की जानब से आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ दायर नस्लकशी के मुकदमे की हमायत बहुत वाज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुसाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी चल रहे हैं। और एनी शादीन फलस्तीन रियासती मीडिया के मुताबिक इसराइल फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के जनूबी हिस्से में वाक़ दो फलस्तीनी कस्बों पर धावा बोला है। अब खबरें तफसील के साथ। तुर्किया ने पाकिस्तान में ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मुजम्मत की है। तुर्किया ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में मुसाफर ट्रेन को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मुजम्मत करते हुए जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। इतवार को जारी करदा एक तहरीर बयान में वजारत खारजा ने कहा इस हमले में जानी नुकसान पर गहरा दुख पहुंचा है। बयान में लिखा गया है कि हम स्कूलों ने

खोलने के हवाले से आर्मीनियाई वज़ीर-ए-आज़म निकोल पाशिन्यान के एहतसाब का बयान का हवाला भी दिया। यूनियन फिका के बैन अल-अक़वामी तअल्लुक़ात ताउन उमूर के वजीर रोनाल्ड लमोला ने कहा है कि तुर्किया की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ दायर करदा नस्लकुशी के मुकदमे की हमायत काफी अय्या है। लमोला ने नेशनल पार्क में मुनक़ता जनूबी अफ्रीका तरक्याती बरादरी के हाज अमूर के उजरा की नशिस्त में ए के रिपोर्टर को इसराइल के खिलाफ दायर नस्लकुशी के मुकदमे के इम्कान पेशरफ के बारे में अपने जायजे पेश किए। उन्होंने बताया कि जनूबी अफ्रीका इस ढांचे की इस्तार कर रहा है जिसे हैक ग्रुप कहा जाता है, जिसका मकसद बैन अल-अक़वामी कानून के सवाल को रोकना है। वो कहा कि तुर्किया समेत मुतद मालिक इस मुकदमे में जनूबी अफ्रीका के साथ शामिल है। लमुना ने कहा मुकदमे के मामले में तुर्किया के साथ मरबूत अंदाज में अमल कर रहे हैं और कहा हम तुर्किया के साथ करीबी तौर पर काम कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका का बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ दायर किया गया नस्लकुशी का मुकदमा कब हुआ था? जनूबी अफ्रीका जमहूरिया ने 29 दिसंबर 2023 को 1948 को कौमता के नस्लकुशी की रोकथाम सजा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम के तहत इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा दायर किया था। अदालत ने 26 जनवरी 28 मार्च और 24 मई 2024 को तीन अलहदा बुरी इकदाम फैसले जारी किए थे। इसने दोबारा वक्त में तोसी की दरख्वास्त करने के बाद 12 मार्च को अपना जवाबनामा अदालत में जमा कराया था। तुर्किया स्पेन नीदरलैंड्स आयरलैंड कोलंबिया मेक्सिको चिली बोलिविया क्यूबा वेल्स ब्राजील कोमरोस नेम्बिया समेत मुतद्दद ममालिक इस मुकदमे में मुदाखलत करने वाले फ्रीकैन में शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात मुनज़्ज़म तामीरी हैं ताहम मुहासरे का सिलसिला एक हतमी वादे तक बरकरार रहेगा। ट्रंप ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू सोशल पर एक पोस्ट में कहा मुहासरे को मुकम्मल तौर पर नाफस रखा जाएगा जब तक कोई मुहदा हासिल तस्दीक और दस्तखत न किया जाए। दोनों फ्रीकैन को वक्त लेना चाहिए और दुरुस्त फैसला करना चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा अमरीका और ईरान के तल्लुकात काफी ज्यादा पेशेवराना नतीजा खेज बनते जा रहे हैं। खबरदार किया तेहरान को जोरी हथियार तैयार हासिल नहीं करने चाहिए। ट्रंप ने मजीद कहा मशरिक वस्ता के हमवाल का हमायत और ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। कहा यह अमल इब्राहिमी माहदों में वसी शराकत के जरिए मजबूत होगी और इशारा दिया ईरान भी एक दिन इस फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकता है। उन्होंने 2015 के ईरान जौहरी माहदे पर तनकीद की इसे अब तक के सबसे बदतरीन माहदों में से एक करार दिया और दोबारा साबिक सदर बराक ओबामा की इंतजामियों को इल्जाम दिया कि यह एक मायूब माहदा था। ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मौजूदा मुज़ाकरात काफी बेहतर है। एक मुअस्सर हिकमत अमली का इस सहन जोर दिया जारी अमन तेहरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकेगा। इतवार को ट्रुथ सोशल पर मजीद एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा ईरान के साथ कोई मुमकिन माहदा अच्छा और मुनासिब होगा जो साबिक सदर बराक ओबामा के तहत 2015 में तय वाले जौहरी माहदे की तरह नहीं होगा। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि आज होने बाद बातचीत के बावजूद समझौते की बाद शिकों बशमूल ईरान के मुंजमद असासे जारी करने के मसले पर अमरीकी रुकावट तहत बरकरार है। ऐनी शाहदीन फलस्तीन रियासती मीडिया के मुताबिक इसराइल फौज ने मकबूजा बिकरार के जनूबी हिस्से में वाकया दो फलस्तीनी कस्बों पर दावा बोला और दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करने पर मजबूर किया और रहायशों पर हमले किए। ये छापे रश के औकात के दौरान किए गए जब कस्बों के मरकजी इलाकों में हुकूमत फलस्तीन की तरफ से सरकारी मुलाजमी की तनख्वाहों के एक हिस्से की अदायगी के बाद ईद उल अज़हा की खरीदारी के लोगों का जमघटा लगा हुआ था। हेब्रोन के जनूब में वाकई इलाकों को निशाना बनाया गया जहां ऐनी शाहदीन ने अनादोलू एजेंसी को बताया इसराइल फौजी गाड़ियां भीड़ के दरमियान कस्बे के मरकज में दाखिल हुई। इसके बाद फौजी सड़कों में फैल गए, आंसू गैस के गोले फायर किए, दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करने पर मजबूर किया। उन्होंने बताया फौजियों ने कई नौजवानों को हिरासत में ले लिया। रियासती रेडियो वॉइस ऑफ पैलेस्टाइन ने इत्तला दी कि बैतुलहम के जनूब में वाकया बैत फजार में इसराइल फौज के दावे के दौरान फलस्तीन नौजवानों और इसराइल फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई। सदर लबनान जोसेफ ओन ने कहा है कि लबनान की सरजमीन से इसराइल फौज की मुकम्मल वापसी को यकीनी बनाना एक कौमी तरजीह है। ओन ने पीर को लबनान की सरकारी खबरसा एजेंसी NNA के जरिए जारी बयान में कहा इसराइल फौज की मुकम्मल वापसी का रास्ता एक साबित कदम कौमी मुतालबा है जिससे लबनान की रियासत मुज़ाकरात के जरिए हासिल करने की कोशिश में है। ओन ने कहा इसराइल के साथ मुज़ाकरात कोई समझौता या सर तस्लीम खम करने का अमल नहीं होंगे बल्कि लबनान की कोशिशें कहे मुल्क की फौजी सिक्योरिटी इदारों के जरिए अपनी सरजमीन के तहफ़ की खातिर अपने खुद मुख्तार हक का इजहार करे। यह बयान इसी वक्त सामने आया जब लबनान ने ताकत आज़ादी का दिन मनाया।
बैरूत और तेल अबीब ने अप्रैल के वस्ते अमरीका की सालसी में बर रास्त तीन दौरे

मुजाकरात किए हैं ताकि देर पा अमन कायम किया जा सके। 17 अप्रैल को नाफज होने वाली जंगबंदी जो बाद अजान जुलाई के अवाल तक बढ़ा दी गई थी के बावजूद जनूबी लिबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयां जारी रहीं। लिबनानी हुकाम के मुताबिक 2 मार्च से जारी तनाजे के दौरान जिसमें इसराइल हिजबुल्ला मुलव्वस हैं, लिबनान में इसराइली बमबारी से 3,100 से ज्यादा अफराद हलाक, 9,500 से ज्यादा जख्मी और तकरीबन 16 लाख अफराद बेघर हुए हैं।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: सान दियागो की मुस्लिम आबादी ने सान दियागो इस्लामिक सेंटर मुखलिफ फायरिंग के बाद इत्तेहाद और साबित कदमी की अपीलें की हैं, जबकि हुकाम इस हमले की तफ्तीश को नफरत अंगेज जुर्म के तौर पर कर रहे हैं। ख्याल है कि पीर के रोज दो मुसल अफराद मस्जिद के कॉम्प्लेक्स पर फायरिंग की थी, जिसमें तीन अफराद हलाक हुए और बरादरी में खौफ और हरास फैल गया था। हुकाम ने कहा मुलजमान वसीफ माने पर नफरत की तहरीक से मुतासर थे और नए जराये से इंतहा पसंद बनाए गए थे। हमले ने मुस्लिम तबके में सख्त सदमा पैदा किया, जो सान दियागो मेट्रोपोलिटन इलाके की आबादी का महज 1% से भी कम है। इसने खतरात के खिलाफ मजबूत इज्तमाही रद्दअमल को भी जन्म दिया है। हजारों अफराद शमे रोशन करने के लिए यकजा हुए। कैलिफोर्निया से बाहर से भी लोगों ने इस इज्तमा में शिरकत की। बरादरी के रहनुमाओं ने साबित की कदमियों यकजहती पर जोर दिया, कहा कि हमले के खिलाफ रद्दअमल जाहिर करता है कि हम खौफजदा नहीं हैं। अब्दुल्ला तहरी सदर मुस्लिम लीडरशिप काउंसिल ऑफ सान दियागो ने कहा गम करेंगे, हम शफा पाएंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। हुकाम ने कहा हंगामी प्रोटोकॉल मरबूत रद्दअमल के तरीकाकार की बदल कई जानें बच गई। हमले के वक्त इहाते में 140 से ज्यादा बच्चे अमले के अरकान मौजूद थे। अमले ने अमरीका में बढ़ती हुई इस्लामोफोबिया मुस्लिम मुखालिफ तकारीर के बारे में तशवीश को भी शिद्दत दी है। कुछ दिन बाद बाल्टीमोर में होने वाले बड़े मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, जिसमें 25,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, मुकर्रन ने बरादरी से कहा कम को अमल में तब्दील करें। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के अहदेदार ने कहा इन्हें ताजिए से पढ़कर कुछ देने के पाबंद हैं, हमें इन्हें अजम फराहम करना होगा। रहनुमा ने मुनज्जम होने शहरी हकूक के दिफा में शहरी शमूलियत बढ़ाने का मुतालबा भी किया। मकामी मीडिया ने पीर को रिपोर्ट किया है हुकूमत मलेशिया हुकूमत गजा जाने वाली ग्लोबल स्मूथ इंसानी इमदादी बेड़े के सरगर्म कारकुनों के मुबैना अगवा और तशद्दुद के हवाले से इसराइल के खिलाफ आर्मी अदालत इंसाफ से रजू करेगी। मलाई मेल ने रिपोर्ट किया है कि मलेशिया की रियासत सलांगोर के चीफ मिनिस्टर अमरुद्दीन शारी ने कहा कुआलालंपुर वकला के जरिए मालूम इस्बात इकट्ठा करने के बाद फौरन कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस पेड़ में सवार 400 से ज्यादा बैन अवी कारकुनान, जिनका मकसद इमदाद पहुंचाने के लिए इसराइल के गजा पर समुद्री नाकाबंदी तोड़ना था, गुज़िश्त हफ्ते बैन अवी पानी में इसराइल फोर्सेज के हमले का निशाना बने और हिरासत में ले लिए गए। अमरुद्दीन ने कुआलालंपुर बैन अवी हवाई अड्डे पर ग्लोबल स्मूथ बेड़े 2 के इस्तकबाल के मुकर कर कहा बेड़े के शुरका को अगवा किया गया, इन पर तशद्दुद किया गया, हम खामोश नहीं बैठेंगे, उनका हम इसे अदालत में ले जाएंगे, सफारती दबाव जारी रखेंगे, मुल्क भर में रैलियां भी निकालेंगे। आम दिन का यह कानूनी इकदाम बेड़े के कारकुनान खसूस मलेशिया से ताल्लुक रखने वाले शुरका के खिलाफ मुबैना बरबरी जिनमें अगवा और तशद्दुद भी शामिल हैं के रद्दअमल के तौर पर हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में अबोला केसेस की तादाद 100 से तजावज कर गई। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में शुबा सेहत के हुकाम की जान से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वबा में अबोला वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 100 से तजावज कर चुकी है। इसका फैलाव तेजी से बढ़ रहा है। वजारत मुआसला की तरफ से शायर रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 मई को इतवरी सूबे में वबा फूटने के बाद 23 मई तक वायरस ने मुल्क के 11 इलाकों को मुतासर किया है और 900 से ज्यादा मुश्तबे केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही सदाए तुर्किया से खबरें खत्म हुई। सामिन हम सदाए तुर्किया की उर्दू सर्विस से मुहतब हैं, तो आइए अब सिबल जान और तारकन की आवाज़ में दो तुर्की नगमे सुनते हैं।